0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 4 जून 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही समय हो चला है खबरों की ओर रुख करने का. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे. और आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईहुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर आज का कार्यक्रम सुना जा रहा है. नमस्कार ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से हमें सुन रहे सभी श्रोताओं का SBS हिंदी पर हार्दिक स्वागत है. मैं हूं भव्या पांडे और अगले एक घंटे तक हमारा साथ जो है वो बना रहेगा. चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे दिन से जिसने ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की दिशा बदल दी. देशभर में आज माबो डे मनाया जा रहा है. ये दिन एडी माबो के संघर्ष और उस ऐतिहासिक फैसले को याद करने का अवसर है जिसने स्वदेशी भूमि अधिकारों को कानूनी मान्यता दिलाई थी. इसी पर एक खास रिपोर्ट आज आप तक लेकर आऊंगी. इसके अलावा रंगमंच की दुनिया से एक खास कहानी भी होगी. भारत और पाकिस्तान से आए दो कलाकार एक मंच पर 3 समकालीन नाटकों के जरिए संवाद, साझेदारी और कला की ताकत को नई आवाज दे रहे हैं. अब ये लोग कौन हैं और इनसे क्या बातचीत हमने की है जल्द आपको बताऊंगी. और आपको बता दूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नए हैं तो कॉफी ऑर्डर करना कभी कभी किसी नई भाषा सीखने जैसा लग सकता है. फ्लैट व्हाइट, लाटे, लॉन्ग ब्लैक और दूध के अनगिनत विकल्प. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड में आज हम जानेंगे कि कॉफी के कितने प्रकार होते हैं और कॉफी संस्कृति यानी कॉफी कल्चर को हम आज समझने की कोशिश करेंगे. तो आज बात हो रही है कॉफी की और कॉफी ऑस्ट्रेलियंस की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है. तो आज जानना चाहती हूँ कि आप अपनी कॉफी किस तरह से लेना पसंद करते हैं. इसके अलावा यदि मेलबर्न या सिडनी में या कहीं भी और कोई बढ़िया सी कॉफी शॉप हो जहां की कॉफी आपको सबसे अच्छी लगती है बताएं मुझे. नंबर है 0439799767. इसके अलावा आपको बता दूं कि इसी नंबर पर आपके संदेश मुझ तक आते रहने चाहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे जो श्रोता है वो मेरे साथ शो के अंत तक जुड़े हुए हैं. साथ ही कुछ बढ़िया से गाने भी आज आपके लिए लेकर आऊंगी. लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबरों पर. प्रस्तुत है 4 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ. आइए नजर डालते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय समाचारों पर. फेडरल सरकार आज अपने प्रस्तावित बजट उपायों के पहले चरण को निचले सदन में पारित कराने के प्रयास करेगी. सरकार को उम्मीद है कि ये पहला चरण आसानी से पारित हो जाएगा. हालांकि कर व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों को लेकर ग्रीन्स पार्टी ने नई चिंताएं व्यक्त की हैं. ग्रीन्स के ट्रेजरी प्रवक्ता निक मैकेम का कहना है कि सरकार कर नियमों में बदलावों के लिए अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां हासिल करना चाहती है. ऐसे में सीनेट में इन टैक्स रिफॉर्म्स को पारित कराने के लिए सरकार को ग्रीन्स का समर्थन मिलेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है. वहीं अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है जिसका उद्देश्य ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई को कांग्रेस की मंजूरी के बिना आगे बढ़ाने से रोकना है. ये प्रस्ताव 215 के मुकाबले 208 मतों से पारित हुआ है. आपको बता दूं कि इस दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का समर्थन किया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मतदान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के प्रति बढ़ती चिंता को दर्शाता है, विशेषकर ऐसे समय में जब क्षेत्रीय संघर्ष लगातार तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है. वहीं कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए ड्रोन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं. ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यह हाल में हुई अमरीकी सैन्य कार्रवाइयों के जवाब में किया गया प्रतिशोध था. वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है. रूस के राष्ट्रपति प्रवक्ता डिमिट्री पेस्कोव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की इस इच्छा पर प्रतिक्रिया दी है कि युद्ध इस वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाना चाहिए। पेस्कोव ने कहा कि यदि आवश्यक निर्णय लिए जाएं तो संघर्ष आज ही समाप्त हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई नई शर्त या योजना सार्वजनिक अब तक नहीं की है। वहीं एक खबर क्वींसलैंड से, राज्य की बाल सुरक्षा व्यवस्था पर आई एक गंभीर रिपोर्ट के बाद सरकार ने आगे की कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समिति गठित करने का फैसला किया है। ये समिति अगले 2 महीने में रिपोर्ट की शेष सिफारिशों पर विचार करेगी। परिवार मामलों की मंत्री अमांडा कैंप पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवासीय देखभाल केंद्रों से हटाया जाएगा। अन्य समाचारों में, एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को नॉर्वे की राजकुमारी प्रिंसेस इनग्रिड अलेक्जेंड्रा के निकट जाने से 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अदालत ने 63 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ निरोधक आदेश जारी करते हुए उसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी परिसर में प्रवेश करने से भी रोक दिया है, जहां राजकुमारी वर्तमान में अध्ययन कर रही हैं। वहीं न्यू साउथ वेल्स सरकार ने औषधीय कैनबिस उपयोगकर्ताओं को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रस्तावित कानून के तहत प्रेस्क्रिप्शन वाले मरीजों को कुछ परिस्थितियों में वाहन चलाने की अनुमति दी जा सकती है, जिससे वे स्वतः

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: Three employees and two work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश. इसके अलावा आपको बता दूं कि आज मैंने आपसे पूछा है कि आप अपनी कॉफी किस तरह से लेना पसंद करते हैं. अपना कॉफी ऑर्डर मुझसे शेयर करें. नंबर है 04397997667. चलिए, ऑस्ट्रेलिया भर में आज माबो डे मनाया जा रहा है, जो देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक बदलाव की याद दिलाता है. ये दिन एडी माबो के संघर्ष और 1990 के दौरान ऐतिहासिक माबो फैसले को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जिसने स्वदेशी भूमि अधिकारों को मान्यता दिलाई थी. इस अवसर पर एडी माबो के परिवार ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों से न्याय, सच्चाई और मान्यता की लड़ाई को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है. नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ. और आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में आज माबो डे मनाया जा रहा है, और इस अवसर पर एडी माबो के परिवार ने उनकी विरासत को याद करते हुए एक भावुक संदेश दिया. गोल्ड कोस्ट में आयोजित ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ एबोरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर स्टडी समिट में गेल माबो और केलिन माबो ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों से सत्य यानी ट्रूथ, न्याय और मान्यता की लड़ाई को आगे बढ़ाने की अपील की है.

0: क्वींसलैंड में आयोजित इस समिट में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उस व्यक्ति को सम्मान दिया गया जिसने ऑस्ट्रेलिया का इतिहास बदल दिया था। माबो डे के अवसर पर हजारों लोग गोल्ड कोस्ट कन्वेंशन सेंटर में एडी माबो के जीवन और उनकी विरासत का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। समिट को संबोधित करते हुए एडी माबो की बेटी गेल माबो ने अपने पिता के समर्पण और दृढ़ संकल्प को याद किया।
1: That was my dad who did that deadly thing. It took him 15 years, but he did it. He was someone who was hungry for knowledge. He worked at James Cook University. During his lunch times, he went to the library and found every book they had on the Torres Straits or anything on history of the Torres Straits.
0: वहीं एडी माबो के पोते कैलेब माबो ने NITV से कहा कि ये दिन आत्मचिंतन और स्मरण का महत्वपूर्ण अवसर है।
2: It's a day where I remember what both my grandparents were fighting for, and I guess the journey that they went through of struggle into stepping into power and then changing the fabric of the nation.
0: माबो डे 1992 में आए उस ऐतिहासिक हाई कोर्ट फैसले की याद में मनाया जाता है जिसने टेरा नलियस की कानूनी अवधारणा को खारिज करते हुए एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों के नेटिव टाइटल अधिकारों को मान्यता दी थी। इस फैसले ने आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के भूमि से पारंपरिक संबंध को स्वीकार किया और नेटिव टाइटल अधिकारों का मार्ग प्रशस्त किया। NITV से बातचीत में बैरिस्टर जॉश क्रीमर ने इस फैसले के महत्व को समझाया।
3: Before Eddie Mabo, we were considered in law barbarians and savages who couldn't have rights and interest in land. That was what, and that's what the judgment talks about, the Mabo judgment. And so, you know, his actions overcome that for 100 and almost 200 years we lived in that existence, and he was able to identify and you know, a precedent saying that. You know, we are people, we exist, we have rights and interests, and we need to be recognized.
0: एडी माबो का अपने लोगों के प्रति समर्पण आज भी उनके परिवार के माध्यम से जीवित है। कैलेब माबो का कहना है कि शिक्षा उनके सामाजिक बदलाव के प्रयासों का प्रमुख आधार है।
2: For Indigenous people, this is the foundation of our culture, the intergenerational knowledge sharing and keepers of stories. So for myself, there's a huge push, just like my grandfather, in education in terms of

0: both cultural and a Western education.
1: कैलेब का ये भी कहना है कि उनके दादा के सम्मान में एक राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिए.
0: To bring a light to it and shine a light on the significance of the day, because it changed the fabric of the found of the nation. So why wouldn't you acknowledge that?
1: माबो फैसले को आए 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है और आज भी पूरे ऑस्ट्रेलिया में इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में याद किया जाता है. हालांकि गेल माबो का मानना है कि उनके पिता द्वारा शुरू की गई लड़ाई अभी भी समाप्त नहीं हुई है.
2: So we as Indigenous people know unfinished business has to come to a head. And through speaking the truth, that shall happen.
1: जोश क्रेमर का कहना है कि एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों के अधिकारों के मामले में ऑस्ट्रेलिया को अभी लंबा रास्ता तय करना है.
3: You want to be able to go to the court and say our rights have been infringed or our rights should be XYZ. And in Australia, we've got very little in the way of rights. We've got recognition of native title, land rights, and then probably to be free from racial discrimination. That's all we have as First Peoples. And I think, you know, we deserve, like other First Peoples around the world, we deserve much more.
1: SBS News के लिए Angelica Wett और Michael Rennie द्वारा इस खबर को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे. तो दोस्तों, यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौट कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. सुनते रहें SBS हिंदी.
4: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. तो 3 समकालीन नाटकों की ये खास प्रस्तुति सिर्फ अपनी कहानियों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान से आए 2 कलाकारों सोनल शंकर और अंशु आड्रेकर की साझेदारी के लिए भी विशेष है. ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच दूरियों की चर्चा होती है, क्या कला और रंगमंच संवाद जुड़ाव का एक नया पुल बन सकता है? आइए जानते हैं.
9: SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं. मैं हूं नताशा कॉल और आज मैं आपको ले चलूंगी थिएटर की दुनिया में. तो मेलबर्न में 3 प्रभावशाली समकालीन नाटक जो दर्शकों को एक अनोखे अनुभव से रूबरू कराएंगे, मंच पर होने वाले हैं. लेकिन इस प्रस्तुति की खास बात सिर्फ इसकी कहानियां नहीं हैं. असल दिलचस्पी इस बात में है कि जहां आमतौर पर किसी भी नाटक में कलाकार, निर्माता और निर्देशक होते हैं, वहीं इस प्रोडक्शन में 2 कलाकार पड़ोसी देशों से हैं. जी हाँ, सुनील शंकर पाकिस्तान से हैं और अंशु अद्रेकर भारत से हैं. तो ऐसे समय में जब अक्सर दोनों देशों के बीच सिर्फ दूरियों की बात होती है, क्या कला और रंगमंच इन सरहदों के बीच की दूरी को थोड़ा कम कर सकते हैं? क्या मंच पर साथ खड़ी ये साझेदारी एक नई उम्मीद की कहानी कहती है? आइए सुनते हैं इसी पर आधारित ये खास अंश. आपको बता दें, इस प्रस्तुति का नाम है ट्रिपल बिल. जिसमें तीन कहानियां प्रस्तुत की जाएंगी और ये अंश हम आपको दो भागों में सुनाएंगे। ये है इसका पहला भाग। सुनील, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहती हूँ। आप पाकिस्तान से हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई भारत की यादें हैं जो आज आप अपने शेयर करना चाहते हैं?
10: इट्स सच इंटरेस्टिंग थिंग। मैं बेसिकली राजस्थान नागौर से हूँ। वहाँ के करीब एक गांव है जायल के नाम से। वहाँ से हम लोग, माय दादा केम टू पाकिस्तान इन 1950s। सो मैं इंडिया सिर्फ एक दफ़ा गया हूँ अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री में। वो भी मैं जब प्ले लेकर गया था मंटो रामा NSD और कलकत्ता में हमने परफॉर्मेंस की थी। सो मेरी मेमोरी सिर्फ 3 दिन की है इंडिया की, एंड दे आर ब्यूटीफुल मेमोरीज। उसके अलावा मेरे बहुत इंटरेक्शंस रहे हैं जितने भी इंडियन आर्टिस्ट्स हैं, थिएटर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके साथ काम करते रहे। वो पाकिस्तान आए, हमने उनके साथ काम किया। तो मेरी वो 3 दिन, इट्स लाइक आई लिव्ड माई लाइफ।
9: अंजू, आप भारत से हैं, तो क्या आपके पास कोई पाकिस्तान की ऐसी यादें हैं जो आप हमसे आज साझा करना चाहती हैं? क्या आप कभी पाकिस्तान गई हैं?
11: देखिए, मैं पाकिस्तान कभी गई तो नहीं हूँ
12: जी,
11: बट मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हैं पाकिस्तान से, जो मतलब बहरीन में रह के मैं 7-8 साल में काफ़ी दोस्त बने हैं मेरे से। मेरे को जो क्यूरियोसिटी थी वो सब मैंने बात करी उनसे, एंड क्यूरियोसिटी ये थी कि मेरे जो डैड के साइड के लोग हैं वो मुल्तान के हैं।
12: अच्छा।
11: तो मेरी जो दादी हैं उनकी जो पंजाबी थी वो काफ़ी मुल्तानी वर्ड्स वो काफ़ी यूज़ करती थी। शी हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सेंट कम्पेयर टू द अदर पंजाबीज। सो एंड देन शी यूज़ टू टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स जो मेरे मेमोरी में था, तो मैं थोड़ा उससे रिलेट कर पाती थी जो वो बात करते थे।
9: तो आप दोनों मिलकर एक यहाँ पर एक प्ले प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें उसके बारे में बताएं। आप दोनों कैसे जुड़े और ये प्ले क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं।
10: कैसे जुड़े? तो मैं अंशु, आप बताइए।
11: सो सुनील जो है वो आई थिंक 3 years or 4 years बैक ही डिड हिज फर्स्ट प्ले, ही डायरेक्टेड एंड ही एक्टेड, एंड है ना चुप करके एक प्ले था, एंड विच यू नो मैं, एंड बिकॉज आई लव थिएटर एंड आई लव दीज शोज, है ना, तो मैंने देखा इसे दिस लुक्स वेरी डिफरेंट देन नॉर्मली जो मैंने देखे हैं कोई, मैंने
12: ये मेलबर्न में जी,
11: बिकॉज गिने चुने कम्युनिटीज हैं जो हु डू द प्ले, एंड आई सेड दिस वन लुक्स वेरी डिफरेंट, सो आई गॉट इंट्रीक्ड, दैट्स वन। एंड व्हेन आई ट्राई टू बुक द टिकट्स, ये मेरे लिए नया था, आई माइट बी साउंडिंग अ लिटिल ऑड, बट वो जनरल टिकट थी, देयर वाज नो नंबर्स देयर, सो आई गॉट कंफ्यूज्ड। सो वहां पे एक नंबर मेंशन था व्हिच बिलोंग टू हिम, एंड आई गेव हिम अ कॉल, आई सेड व्हाट्स हैपनिंग, लाइक आई एम नॉट एबल टू बुक द टिकट्स, एंड ही सेड नो नो यू जस्ट बुक द टिकट्स एंड यू कैन सिट एनीवेयर। सो आई सेड सो, एंड देन वी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट, एंड ही सेड आई हैव रिसेंटली मूव्ड इन, एंड ही गेव मी अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड कि क्या करते हैं पाकिस्तान में, क्या उनकी यू नो एक्सपीरियंस रहा है, क्या उनकी पढ़ाई रही है। तो आई थिंक हम लोग एट द एंड ऑफ द टॉपिक हम लोग ये बोल रहे थे कि किसी दिन करेंगे काम।
12: अच्छा,
11: बस वो एक रह गया था। उसके बाद वी मेट थ्रू अनदर फ्रेंड जो मेरे वो राइटर हैं और वो भी इंडिया से हैं, बट वो इनको जानते हैं, सो ही काइंड ऑफ गॉट अस अप बैक अगेन कि यू नो वी नो सुनील, एंड सर आई नो सुनील, तो हम लोग फिर बात किए वापस, एंड दैट्स आई थिंक जनवरी में वी डिसाइडेड कि यार कुछ करते हैं, ही सेज व्हाई डोंट वी डू वर्कशॉप, क्यों नहीं करते साथ में, सर हाँ हाँ वो भी करेंगे। फिर इन्होंने कुछ स्टोरीज एक्सचेंज की विच आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, विच आर द जो स्टोरीज हम लोग अभी कर रहे हैं
12: जी,
11: वो हैं, एंड आई थॉट कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और मैंने कभी यहाँ पे परफॉर्म होते हुए नहीं देखे, स्पेशली फ्रॉम अ साउथ एशियन बैकग्राउंड से मतलब, तो ऐसे सुनील करना चाहिए, तो दैट्स व्हेन द होल प्रोजेक्ट जो अभी हो रही है
12: प्रोडक्शन। तो सुनील, उसके बारे में हमें बताएं, ये है क्या और इसमें किस तरह से आप इसको प्रेजेंट करने वाले हैं?
10: तीन प्लेज हैं, तीन कहानियां हैं, रिटन बाय बी गुल, बेडरूम कॉन्वर्सेशन, और दो खेल फवाद खान ने लिखे हैं, एक जिसका पहले का नाम है ड्रीम्स ऑफ एटिका एंड दूसरा है इन एंड आउट। दोनों इंग्लिश में हैं, फवाद खान ने इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन खेल थोड़ी सी फवाद जो लिखते हैं वो अपनी मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी जिंदगी से इंस्पायर्ड हो गए, बट कुछ उनके अपने जाती एलिमेंट्स हैं जो वो कुछ खुद बातें करना चाहते हैं, और एज अ राइटर ही इज वेरी प्रोएक्टिव इन प्रमोटिंग हिज ओन कल्चर, एंड सेम एज मी एज एन एक्टर एज एन डायरेक्टर आई वांट टू पोर्ट्रे स्पेशली वो कल्चर जो 1947 से पहले का है। मैं

0: जैसे एक और खेल भी है जो हम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं काफी मोटिवेट करता हूँ अंशु को करने के लिए बेताली, वो भी बाद में बात करेंगे। तो खैर इस खेल में ये तीनों खेल जो हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस करते हैं। जैसे कि ड्रीम्स ऑफ एटिका है वो एक कपल की कहानी है, बाजों का दो कपल आपस में बात करते हैं, बस सिर्फ बातें करते रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आती क्या है। तो उसमें एक होम कमिंग का आंसर है। होम कमिंग का मतलब है कि आप अपने घर को याद कर रहे हैं, आप अपने मुल्क में नहीं है। थोड़ा सा एब्सर्ड कॉमेडी है जो कि थोड़ा सा इवेंचुअली ट्रेजिक भी होती है और डार्क भी हो जाती है एक टाइम पे, जिसके बारे में कह रहा था ना कि थोड़ा सा लोग फील करेंगे कि आज इतना डार्क, क्योंकि वो एक सच्चाई भी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस सच्चाई को बिल्कुल सच्चा सच की तरह ही दिखाया जाए। मैं चाहता हूँ कि लोग उससे मूव हों, लोग उससे क्वेश्चन रेज करें कि यार ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं और ऐसे चीज़ें लोगों के साथ होती है कपल्स के दरमियान, जब आप ख्वाबों में जाते हैं और ख्वाब के अंदर फिर एक और ख्वाब में चले जाते हैं और उस ख्वाब में कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो दो कपल्स की एक डिस्कशन है जो कि एक एब्सर्ड स्टेट में है, जो कि जो जगह कहीं भी हो सकती है। तो इसलिए वो स्टोरी को रखने का मकसद ये भी है, क्योंकि वो सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ अपने कल्चर की बात करें, हम यूनिवर्सल की बात करें, ताकि अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी अगर ऑस्ट्रेलियन आवाम देखती है, लोग देखते हैं, तो वो भी उसे कनेक्ट करें। सो उसको इंडियन एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें मैं भी उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिखा प्रोड्यूस अंशु कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो कोलैबोरेशन। दूसरा प्ले इन एंड आउट, वो भी अगेन कपल्स के बारे में ही है, वो भी आपको बहुत क्यूरियस करिएगा कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। एक इट्स नॉट इवन फार्स, लेकिन वो एक कॉमिक एलिमेंट है
1: जी।
0: उसमें कॉमेडी का एलिमेंट है कि एक पार्टनर जो है वो घर से जाना चाहता है और दूसरा भी घर से जाना चाहता है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन चाहेगा कि कौन निकलेगा। तो इस तरह की बातें हैं। सो उसमें कुछ बीच में कल्चरल बातें भी आती हैं, थोड़ा सा वो इट्स सख्त बातें हैं उसके अंदर, जो कि हम नर्म नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर घर की बात होती है, रसवाई की होती है, लेकिन मेरे ख्याल करना जरूरी है।
1: जैसे
0: कि मतलब कुछ ऐसी चीजें कंटेंट हैं जब आप पर्सनली एक कपल आपस में जब डिस्कस करता है तो बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें करता है जो शायद वो बातें करता नहीं, अपने जहन में रखता है, लेकिन उस प्ले के थ्रू हम वो बातों को हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए ये बातें वो लोग बोलते हैं, हाँ ये मैं सोचता हूँ अपनी वाइफ के बारे में, तो और थोड़ी सी क्रूड बातें भी हैं उसमें।
1: अच्छा।
0: तो एक ये बाकी बेडरूम
1: कॉम्प्लेक्सिटीज
0: हैं उसमें, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। बेडरूम कॉन्वर्सेशन इज ऑल अबाउट डिफरेंट क्लासेस ऑफ, वो थोड़ा सा रिलेट करता है उसमें, पंजाबी भी कैरेक्टर है आपको, एक पंजाबी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हाई मिडिल क्लास के लोग हैं, उसमें पारसी एक फैमिली है जो गुजराती में हम कोशिश कर रहे हैं उसको करें, कुछ लोग बिल्कुल सलीस उर्दू है जिसको सलीस उर्दू का मतलब है कि बिल्कुल शुद्ध, जैसे हिंदी होती है शुद्ध उर्दू है उसमें, और तो डिफरेंट क्लास के लोग हैं, लेकिन वो कल्चर जो है वो पाकिस्तानी कल्चर को ही रिफ्लेक्ट करता है। पाकिस्तानी कल्चर का मतलब ये नहीं है कि उसमें हम कोई एरिया बता रहे हैं कि भाई ये कराची से, इट्स लाइक दे स्पीक लाइक अस, दे स्पीक हिंदी में या उर्दू में बात करते हैं वो, तो हमें लगता है कि ठीक है फाइन। ऑब्वियसली हमारा उसमें जो ड्रेसेस हैं जो बिल्कुल साड़ी डिफरेंट चीजें हम ये रख रहे हैं, वो बेडरूम कन्वर्सेशन बिल्कुल आपसे कनेक्ट करेगा। लेकिन उस
2: इस अंश के दूसरे भाग को सुनने के लिए जुड़े रहें SBS हिंदी के साथ।
3: तो दोस्तों इस अंश को आप तक लेकर आई थी नताशा कॉल, और जैसा कि आपने सुना कि इसका पहला भाग हमने आपको अभी सुनाया है और दूसरा भाग जो है वो बिल्कुल ब्रेक के उस पार आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको आज का सवाल बता देती हूँ। आज मैंने आपसे पूछा है कि आपका कॉफी ऑर्डर आप कैसे देते हैं, किस तरह की कॉफी पीनी आपको पसंद है, जल्दी से बताएं मुझे 04397997667 पर, और तब तक आपको ये प्यारा सा गाना सुनाती हूँ।

0: तो दोस्तों यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौट कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहें SBS हिंदी।
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
0: तो दोस्तों ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो आपको बता दूं कि वक्त हो चला है 5:34, और वैसे तो आप मेरा कोई भी शो मिस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप आज के कार्यक्रम में मेरे साथ जरा देरी से जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर ये सभी अंश और कार्यक्रम फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा SBS हिंदी फेसबुक पर भी है, तो यदि आपने हमें अभी तक फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। और साथ ही अब हम इंस्टाग्राम पर भी आ गए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर की न्यूज को हम किस तरह से एक अलग अंदाज में आप तक लेकर आ रहे हैं, तो जल्दी से जाएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। चलिए, आपके खूब सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जो कि जल्द पढ़ूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है कि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो तीन समकालीन नाटकों की ये जो खास प्रस्तुति जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, कहानियां ही नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान से आए दो कलाकारों की साझेदारी है। इसका पहला भाग हम आपको ब्रेक से पहले सुना चुके हैं, तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का ये दूसरा भाग।
8: आप सुन रहे हैं ट्रिपल बिल प्ले एपिसोड का दूसरा भाग। इसमें भारतीय मूल की अंशु अद्रेकर और पाकिस्तानी एक्टर और डायरेक्टर सुनील शंकर दोनों अपनी नई प्रस्तुति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे मेलबर्न में मंचित किया जाएगा।
9: जी, तो जब आप ये प्ले को कंसेप्चुलाइज कर रहे थे तो ऐसा कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ हो जो आपको लगता है कि दोनों पड़ोसी देशों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, या कह लीजिए कि दोनों कम्युनिटीज जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, उनको और नज़दीक लाने की एक पहल हो सकती है, ऐसा कुछ किसी बात को लेकर आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया हो?
10: एक्चुअली बात तो हम लोग एक और प्ले की कर रहे थे एंड विच वॉज दैट कैरेक्टर वॉज वी आर नॉट रिवीलिंग इट राइट नाउ बट द कैरेक्टर हैज लिव्ड इन पाकिस्तान एंड देन मूव टू इंडिया.
11: नहीं, कह सकते हैं, बात की जा सकती है. लेकिन हम भले उसको अभी सोच रहे हैं करने में,
10: अभी हम लोग सोच रहे हैं उसको करने
11: के लिए. हमारे दो प्रोडक्शन जहन में है
10: जी.
11: तो बेसिकली पहली प्रोडक्शन बताइए आप.
10: तो वी वर थिंकिंग ऑफ अमृता प्रीतम. सो वी वर एंड आई हैव बीन Great living fan. about, you know, thinking Sabhi about fan. her, and that idea is not leaving my mind for last 20 Jee. years. तो मैं सोनील को बोला है सर, यू नो, अगर हम लोग ये इनका कैरेक्टर लेते हैं जो दोनों कंट्रीज में रह चुकी हैं और जानी जा चुकी हैं और यू नो लोग चाहते भी हैं उन्हें, तो दैट विल एक्चुअली यू नो काफी क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा दोनों साइड्स ऑफ दिस थिंग. Having said that, ये उधर से शुरू हुआ, लेकिन ये जो तीन स्टोरीज है वो मुझे इतनी अच्छी लगी, ऐसे ये ना ये इमिडिएटली हम लोग डालते हैं. ये ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान, बट ये मल्टी कल्चरल एंड ऑस्ट्रेलियंस को भी ये बहुत अपील करेगा. ये
12: एज एन आर्टिस्ट आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी टू रिप्रेजेंट योर ओन कंट्री, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जब आप दूसरी कंट्री में आर्ट फॉर्म प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कैसे आपने उसको कैसे बैलेंस किया?
11: मैं बहुत पर्टिकुलर इस मामले में, मैं कोशिश ये करता हूँ कि यस, बिल्कुल आपने सही कहा कि एज एन आर्टिस्ट हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है.

0: जाती है, स्पेशली जब अपने कल्चर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें गलत भी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ऐसी पोजीशन पर ना छोड़ें कि हम अपने कल्चर की ही मतलब रुसवाई हो। सो वो
1: एक फ्रीडम भी, आर्ट फ्रीडम भी जो यहाँ पर मिलती है आपको, उसके साथ जोड़ के आप कैसे बैलेंस करते हैं, और वो फ्रीडम के बारे में भी हमें बताएं कि आप कैसे एंजॉय करते हैं वो फ्रीडम।
0: फ्रीडम तो है, कुछ बातें हैं कि आप कुछ कल्चर के अगेंस्ट नहीं कह सकते, वो कल्चर कैसे वो कहेंगे। यहाँ पर हम आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम उस कल्चर को प्रमोट करें, लेकिन हम पर हमें दूसरी किस्म की आज़ादी है यहाँ पर कि आप या तुम इंचो के साथ काम नहीं करोगे या उसके साथ, ये ऐसा कुछ है नहीं,
2: क्योंकि थर्ड स्पेस पे वो फ्रीडम है हम दोनों जी कि यू नो लेट्स डू इट, लाइक यू नो ऐसा नहीं है कि वी अलग कंट्रीज हैं और जो भी हिस्ट्री रह चुकी हम दोनों की कंट्रीज की, बट ये फ्रीडम हम लोग बहुत भरपूर यूज कर रहे हैं बिकॉज आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम सुनील, यू नो एज एन आर्टिस्ट, एज समबडी हुज बीन इन इस फील्ड में इतने सालों तक रह चुके हैं, तो ये मुझे लगता है कि यू नो दैट थर्ड स्पेस में ही ये पॉसिबल था जो कि मेलबर्न है, जो मल्टी कल्चरल है, और आई एम प्रिटी श्योर कि काफ़ी लोग पसंद करेंगे द फ्रीडम जो हम लोग ने ली है, एंड दैट इज गोइंग टू बी शोन अप इन द स्टोरीज।
3: अच्छा, आजकल के ज़माने में हर कोई हारमनी की बात करता है, तो क्या आपकी ये प्रोडक्शन भी इस टॉपिक को छू रही है, और अगर हाँ तो उसे किस तरह ये प्रेजेंट कर रहा है?
2: देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोल रही थी कि द हीरो ऑफ द होल थिंग इज द स्टोरी, यू नो हम लोग ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि इंडियन एंड पाकिस्तान, इट्स अ स्टोरी जो आप लोग रिलेट करेंगे, जो आप लोग एक थॉट लेकर जाएंगे उस स्टोरी का, इट वॉन्ट जस्ट वो एक दिन की बात नहीं होगी, वो आप ले वो रहेगी आपके जहन में काफी टाइम तक के लिए। तो हम लोग ऐसे इंडिया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा वो नहीं कर, यार वी यूज्ड टू बी वन, वो बहुत जरूरी नहीं है वो पूरा हम लोग इतना उसे हाईलाइट करें
1: जी,
2: है एंड है इन द सेंस इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट वी आर टेकिंग कि एक मैं एक पाकिस्तानी एक्टर्स एक्टर डायरेक्टर जो इस फील्ड में रह चुके हैं, जो ये थॉट प्रोसेस को जानते हैं, जिनको पता है कि कैसे प्रेजेंट करना है, क्या रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज मैनेज करनी है, वो मैं उनके पर्सपेक्टिव से मैं सीख पा रही हूँ एज एन इंडियन विच आई नेवर हैड एन एक्सपोजर टू।
0: और हार्मनी एक और तरीके से भी है, जैसे कि अब हम जो म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं अब वो राग की रवानी में, ठीक है, शास्त्रीय संगीत है, सो वो अब वेस्टर्न सोसाइटी में तो नहीं है, ठीक है, तो वो एक हार्मनी ऐसे क्रिएट हो रही है और ऑल द इंडियंस आर एक्टिंग इन इट मोस्टली, या अपार्ट फ्रॉम मी, सो वो एक हार्मनी ऐसी क्रिएट हो रही है। यस, शी इज एब्सोल्युटली राइट, बेसिकली द स्टोरी इज द मेन थिंग, कहानी इतनी खूबसूरत है और कहानी आपको आप उसे रिलेट भी करते हैं, कल्चर से भी है, तो ये एक हार्मनी हम इस तरह क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज वी आर, हमने शुरू में भी बात ये की थी जब पहली दफ़ा मैं अंशु से मिला था कि मुझे सिर्फ अपनी कहानियाँ सुनानी है, साउथ एशियन कहानियाँ, ठीक है ना, जो जैसे कि बेताली एक है, बेताली प्रेम कथा,
2: वो भी एक इंटरेस्टिंग,
0: वो इट्स सच अ ब्यूटिफुल म्यूजिकल एंड नैरेटिव, इतना म्यूजिकल नहीं है लेकिन इतना जबरदस्त ट्रीट है, उसमें संगीत है यार, इतना शास्त्रीय संगीत में वो आपको कहीं से भी ले सकते उसको, मतलब उसमें इतनी आज़ादी है आपका खुला, और वो किस टाइम में सेट है, वो एंशिएंट टाइम, वो बेताल, अगर बेताल 25 से आपने पढ़ी हो, बेताली दूसरा कौन नाम है, विक्रम बेताल, तो उस पर कहानी बेस करती है, एंड इट इज बेस्ड अबाउट व्हेन आई हैव गिवन यू अ पावर टू चेंज योर जेंडर, देन व्हाट यू विल डू विद दैट। सिर्फ ये एक छोटी बात बता रहा हूँ, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिर वो एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, एक फैंटेसी वर्ल्ड है, बेताल ने अपनी एक दुनिया क्रिएट की हुई है, बिल्कुल जादुई दुनिया है वो, हर चीज एकदम से बंदा ये बन जाता है, ये बन जाता है, ये बन जाता है, पुरुष जो है वो नारी बन जाता है, नारी जो है वो पुरुष बन जाता है, साथ में एक ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ है। मेरा इरादा ये है, इवेंचुअली हम बात वहाँ जा रही है लेकिन मैं फिर मौका है तो बता देता हूँ, मेरा इरादा ये है कि उसमें हम राजस्थानी फोक हो या कोई भी क्लासिकल संगीत के साथ मैं मर्ज करूँ जो इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनियस म्यूजिशियंस हैं, उनका ऑर्केस्ट्रा हमारे साथ चले, क्योंकि वो एलिमेंट आजादी है हमारे पास, क्योंकि वो फैंटेसी वर्ल्ड है। जब बेताल स्टेज पर आता है, कभी ऊपर से आता है, कभी नीचे से आता है, कभी कहां से, कभी बादशाह बन जाता है, कभी गुरुदेव बन जाता है, पर इस तरीके से जब वो बिल्कुल एक एलिमेंट है, जो इतनी खूबसूरत लड़कियां ऑन स्टेज हैं, दे आर डांसर्स, दे ऑल एंशिएंट टाइम्स, मतलब उस वक्त में की है जब हम जैसे कि
2: कोई इंडिया पाकिस्तान जैसे नाम की नहीं था, चीज नहीं थी,
0: कुछ नहीं है उसमें, और दे आर टॉकिंग अबाउट जेंडर।
2: तो यू नो सो ये वाले शो में भी, मतलब जो गानों की, जब म्यूजिक की बात करें, इट डजंट जस्ट बिलोंग टू इंडिया या पाकिस्तान, दैट इज कनेक्टिंग द ब्रिज बिटवीन द टू, इफ दैट इज। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं दिखा रहे कि डिफरेंसेस हैं और उसमें हम लोग ब्रिज कर रहे हैं, हम लोग बस वॉल्स गिरा रहे हैं।
1: आप विक्रम बेताल की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ बहुत पहले पढ़ रही थी, जो बेताल था वो कश्मीर से था, यानी ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वाइज मैन, और वो हमेशा विक्रम से कुछ एंड में ऐसा सवाल पूछता था कि विक्रम को बोलना ही पड़ता था, और जब वो बोलता था बेताल चला जाता था। तो दैट वॉज एक मैसेज होता था उसकी बात में। तो उससे जोड़कर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके प्ले में ऑडियंस क्या मैसेज लेके जा सकती है,
0: या तो बहुत
1: टेकअवेज क्या होंगे,
0: या तो बहुत मुझे सुना के जाएंगे या कि नहीं। मजाक से हटके मुझे लग रहा है कि मैसेज मोहब्बत का मैसेज है
1: जी।
0: बस हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं, और किसी और मुल्क में होते हैं और किस तरह सर्वाइव करते हैं, स्पेशली जब बिकॉज दैट इज वॉज हैपनिंग यहाँ पर, और उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से आप क्या बन जाते हो जब आप अपना देश छोड़कर आते हो, किस तरह सर्वाइव करते हो, तो वो याद कुछ मेमोरीज को हिलाएगा, कुछ उनकी मेमोरीज दोबारा से रिकॉल करेंगे वो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं अपने प्रोजेक्ट के लिए।
0: थैंक यू,
2: थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस ओवर एंड लेटिंग अस टॉक सो मच।
4: तो दोस्तों, ये बातचीत आपको कैसी लगी है बताएं हमें 04397997667 पर। और जब तक आपके मैसेजेस मुझ तक आ रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज मैंने आपसे पूछा है कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, और इसके अलावा आप अपना कॉफी ऑर्डर किस तरह से देते हैं, और मेलबर्न या सिडनी या कहीं भी और यदि आपकी कोई भी फेवरेट कॉफी प्लेस है तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। नंबर तो आपको पता ही है, तो जल्दी से अपने फोन उठाएं, मुझे मैसेज भेजें, और तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।
5: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatutv para más información.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: Oh, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: SBS Hindi हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
5: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जहां आप

0: रहे हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। आपको बता दूं कि खूब सारे संदेश आपके मुझे आ रहे हैं, तो जल्दी से पढ़ देती हूं। चेतन शाह जी लिखते हैं, हाय भव्या, आई एम सो इम्प्रेस्ड दैट SBS इज ब्रिंगिंग सच एन इंटरेस्टिंग टॉक अबाउट अ ड्रामा बाय आर्टिस्ट्स एंड प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। आई होप सच इनिशिएटिव्स ब्रिंग आवर टू कम्युनिटीज टुगेदर इन ऑस्ट्रेलिया। द बिग पिक्चर लुक्स गुड, थैंक यू। तो ये संदेश हमें भेजा था चेतन शाह जी ने, और आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी आज का कार्यक्रम कैसा लग रहा है जल्दी से बताएं मुझे। नंबर है 04397997667। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कॉफी की। ऑस्ट्रेलिया में कॉफी ऑर्डर करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। ब्लैक कॉफी, दूध वाली कॉफी या फिर उसमें भी दूध के कई सारे प्रकार होते हैं। तो आइए ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश में हम वैशाली जैन के साथ समझते हैं कि कैसे आप एक कॉफी के सच्चे माहिर की तरह ऑस्ट्रेलिया में उठा सकते हैं कॉफी का असली मजा।
1: ऑस्ट्रेलिया में कॉफी का शौक इतना गहरा है कि मेलबर्न को दुनिया की कॉफी राजधानी कहा जाता है। यहाँ कॉफी ऑर्डर करना कोई हंसी खेल की बात नहीं, और इसीलिए आइए आज के ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के अंश में समझते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियाई कैफे में कॉफी का जो मेन्यू है उसे कैसे पढ़ा जाए। ऑस्ट्रेलिया के 75% लोग रोज कॉफी पीते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कॉफी ऑस्ट्रेलिया की रक्त धमनियों में लहू के साथ साथ ही बहती है।
2: I normally have one coffee except Ramadan.
3: I have about 3 coffees a day.
4: I have about 5 coffees.
5: Probably at least 4.
6: I have 2 cup of coffees per day.
7: I have up to 8 coffees a day. I am addicted. There doesn't go any 1 hour that I'm not thinking about coffee and needing a hit.
1: यहाँ कॉफी को एक कला की तरह देखा जाता है। अमेरिका से विलग जहां फिल्टर कॉफी का चलन ज्यादा है, ऑस्ट्रेलियाई लोग अपनी कॉफी को उत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आतुर रहते हैं। लिली फेयरहॉल मेलबर्न में एक स्पेशलिटी कॉफी शॉप का प्रबंधन करती हैं। वे कहती हैं,
8: We have been really fortunate to get so many immigrants from Western Europe where espresso originated. So we have heaps of espresso in Australia. And through years and years of drinking espresso, we've come to naturally desire better quality beans. We've started getting beans from different parts of the world, experimenting a little bit more. And I think Melburnians don't really mind paying a little bit more for coffee as well if they know it's going to be good.
1: और ये सब शुरू हुआ एक एस्प्रेसो मशीन के साथ। एस्प्रेसो मशीन बनाई गई थी ताकि कॉफी की कॉन्सेंट्रेट को अधिक दबाव में निकाला जा सके। ये स्ट्रॉन्ग कॉफी का सर्व होता है। इसी कॉन्सेंट्रेटेड सर्विंग को ही एस्प्रेसो कहा जाता है। कुशल बरिस्ता एस्प्रेसो मशीन को इतनी महीन कारीगरी के साथ चलाते हैं कि वे सबके अलग अलग स्वाद की कॉफी बिल्कुल उनकी पसंद की बनाकर पेश कर देते हैं। कॉफी मास्टर सैंटो बुकेरी मैप कॉफी के मालिक हैं। वे कहते हैं कि एस्प्रेसो कॉफी, जिसे शॉर्ट ब्लैक कहा जाता है, हर कॉफी का मूल आधार बनती है। ये नाम इस कॉफी के स्वाद का सटीक परिचायक है और इसे बनाना एक विधि पूर्वक विज्ञान है।
9: Espresso short black is a coffee which is extracted from, in Australia, let's say 10-12 grams of coffee and is extracting 30 ml of liquid out. Don't get confused with ristretto, which is very similar, using the same grams of coffee, 10-12 grams, but extracting around 20 ml of liquid.
1: आपने ristretto नाम की कॉफी भी देखी होगी। ये कॉफी एस्प्रेसो से भी अधिक सघाड़ होती है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और इसीलिए स्वाद में एस्प्रेसो से अधिक कड़क होती है। हालांकि परंपरागत एस्प्रेसो में एक ही शॉट दिया जाता है, लेकिन कई कैफे एक सर्विंग में 2 शॉट भी देते हैं, तो आपको अपनी नींद का ध्यान खुद रखना होगा। हमारे सबसे अधिक प्रचलित कॉफी के ऑर्डर दरअसल काली और सफेद कॉफी में ही बटे हुए हैं, और कोई हैरानी की बात नहीं है कि इनमें से अधिकतर के नाम इतालवी मूल के हैं।
2: I like cappuccino with 2 sugars according to my taste buds.
3: I have 2 week long blacks for breakfast and a cappuccino between 11 and 12.
4: 4 of those would be black coffee and 1 latte max.
10: Long black with a dash of milk on the side or a soy latte.
11: Strong coffees, 3 shots, 4 shots, magic. It's a Melbourne special, magic coffee.
1: काली कॉफी वे

0: होती हैं जो बिना दूध के बनाई जाती हैं। लिली फेयरहॉल के अनुभव में सबसे अधिक प्रचलित काली कॉफी लॉन्ग ब्लैक है।
1: Long black is just hot water and two shots of espresso over the top, drunk by people who like the taste of coffee, obviously. You can get a short black, which is just an espresso. That's for people who really like the taste of coffee or want a very quick hit of caffeine. Another black coffee that's become really popular is filtered coffee or batch brew. That one is a drip coffee, which is quite funny because they've gone a little bit back in time, but now the coffee is of better quality, so you can get really good flavors out of it.
0: इसके बाद आती है सफेद कॉफी के विकल्पों की बारी। सफेद कॉफी अमूमन दूध में भाप की मदद से झाग बनाकर कॉफी शॉट मिलाकर बनाई जाती है। एक समय था जब कॉफी में केवल गाय का पूरी क्रीम का या फिर लो फैट दूध मिलाया जाता था, लेकिन अब किसी भी कैफे में आपको सोय, ओट या बादाम के दूध का विकल्प मिल जाएगा। ये बिना डेयरी के विकल्प हैं जो आपको मांगने भर से मिल जाएंगे। कैफे लाटे या केवल लाटे दूध वाली कॉफी को कहा जाता है, जिसके दूध को भाप से मुलायम झाग में औटा जाता है और रेशम सी ये कॉफी एक ग्लास में परोसी जाती है। सुश्री फेयरहॉल समझाती हैं।
1: With white coffee, the most popular by far is a latte. However, a lot of people also drink a flat white. Now, I don't think that there's that much difference between a latte and a flat white, just the type of cup that you put them in. But flat whites originated in Australia and have kind of taken over the world in a way. I don't think that anyone else does them the same way as us, though.
0: Piccolo latte. Latte ka hi ek chota roop hai. इसमें एस्प्रेसो का केवल एक शॉट होता है जिसमें दूध की मात्रा कम रखी जाती है ताकि कॉफी स्ट्रॉन्ग यानी कड़क बन सके। अगर आप मीठे के शौकीन हैं, तो कैपुचिनो कॉफी आपके लिए है, क्योंकि इस दूध वाली कॉफी के ऊपर छिड़का जाता है चॉकलेट पाउडर। भाई मेलबर्न की अपनी एक खास कॉफी भी है जो पिकोलो लाते जैसी ही है, लेकिन उन लोगों के लिए एकदम सही फिट है जिन्हें कैफीन का एक तेज झटका चाहिए। मेलबर्न वालों ने इसे प्यार से नाम दिया है द मैजिक।
1: द मैजिक कंफ्यूजेस अ लॉट ऑफ पीपल। अ मैजिक इज बेसिकली जस्ट अ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट लाटे। इट्स गॉट लेस मिल्क, सो द रेशियो इज स्लाइटली स्क्यूड टू मेक इट टेस्ट अ लॉट स्ट्रॉन्गर। आई थिंक दैट पीपल ऑर्डर्ड देम एनफ दैट दे डिसाइडेड टू गिव इट अ नेम।
0: इस प्रकार की कॉफी उन कॉफी प्रेमियों में ज्यादा प्रचलित है जो एक घूंट में सारी पी जाना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में मैकियाटो आती है। इतालवी में मैकियाटो का अर्थ है दाग या स्टेन।
1: All a macchiato is an espresso shot with a dollop of milk froth on top. Milk generally softens the taste of coffee. It makes it a little bit more palatable. So I think people use that when they want a hit of caffeine, but they don't want that full raw espresso taste. They just want a tiny, tiny bit of milk to kind of balance it out.
0: ऐसे लोगों के लिए भी कॉफी है जिन्हें कैफीन नहीं चाहिए। ऐसी कॉफी को डीकैफीनेटेड कॉफी या आमतौर पर डीकैफ कहा जाता है, जिसका अधिकतर कैफीन निकाल दिया गया होता है। कुछ कैफे ऐसे भी हैं जो आपको एक स्रोत से आई कॉफी बीन्स यानी सिंगल ओरिजिन बीन्स की कॉफी और मिश्रित कॉफी जिसे ब्लेंड कहा जाता है का विकल्प देंगे। और इस सब के बीच में हम बेबी चीनो को कैसे भूल सकते हैं? इस कॉफी को भुलावा भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कॉफी है ही नहीं। एक छोटे से कप में झाग वाले दूध के ऊपर चॉकलेट पाउडर बुरक कर इसे पेश कर दिया जाता है। इसे बनाया गया था ताकि जब तक बड़े अपनी कॉफी पी रहे हों, उनके चुलबुले छोटे बच्चे शांति से बैठे रहें। अब ये बच्चों को आने वाले समय में ऐसे ही एक कप लिए कॉफी पीने की आदत डालने के लिए है, या वर्तमान में माता पिता को शांति के दो पल देने के लिए, ये तो केवल समय ही बता सकता है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को SBS न्यूज से मेलिसा कॉम्पिनोनी और SBS हिंदी से प्रस्तुत किया वैशाली चैन ने।

तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि कैलाश जी का हमें संदेश आया है ब्रिस्बेन से, जो कि बताते हैं कि वो लाटे कॉफी पीना पसंद करते हैं रोज सुबह एक कप, और कहते हैं इससे माइंड फ्रेश हो जाता है। तो आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ

आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, तो आप हमें 04397997667 पर भेज सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज के लिए आपसे इजाजत लेती हूँ। हमारी मुलाकात जल्द होगी फिर से नए गानों के साथ, नई खबरों के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का जो शो था आपको पसंद आया होगा, और आप सभी के मैसेजेस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले ये आज की शाम का आखिरी गाना सुन के जाइए।